सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।

0: आवाज बहन को आवाज परिवर्तन को संवाद रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज
1: रेडियो एनआरएन 99.1 समय को ख्याल राखौं 6 बज्यो।

हाई। एलजी ले ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज, अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी को कंप्लीट रेंज, 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई। नागरिकता भए पुग्छ, हर एक घर को खुशी, घर घर में एलजी। एलजी लाइफ्स गुड।